अब लाइब माबा कैसा मुटो नारक जाने साल हिने तीन ही हाई साल अब बिनी थी मानी न है के बा गुरु अर्जुन देव थी मानी अब न मुटो खलाई लाई टंग सीख टंग थारनी बड़ोग आसुक जरा खाना का तीन ही तामन साल पाला लाई टंग अब न ते ताबु खेंगे खरांगो खाना पाए न कक कहाँ तीन श्रीमद भगवत गीता ने कक कहाँ खाना लाया न कर्म ने बाधिकारस्ते मा फले सु कदाचन मा कर्म फल हेतु बोर माते संगोस्त कर्म ने गीता ने अश्लोक जंगन फुरंग जंग ताम सामुंग तांगनाय बाहेके तांगनाय आबसी निमु सुंतै तांगै मानो फियाबा निनि सामुं तांगमा निबो थायनो निनि मु सुंतै सनामै माया कायतर साव नां निनि खलाय थायनो खलाय दे फियाबा सामुं निबो थायनो खातुंनि ता खलाय दे निनि मु सुंतै बो थाय माना मु सुंगै सामुं तांखे खासुक बुसुक नाय ते सामुंगो बखा वारि वांगला सामंगनिबो थायनो वानसुगियाय खारि सुबैसे सामं तांदि आसुजरा ककाहाम खानाबायखा हायनो खारांगो ताबो खानाबायनो हाबा खुबानि कक तांबिते मिखथों थाखथों गायमनतै ककिसा

0: ओंखाहिंकाय आबनबो बुक्ता बिरुद फौजदारी आइन पारिवारिक आइन श्रम ओ ते शिल्प आइन भूमि अधिग्रहण रिक्विजिशन सम्पत्ति कर भाड़ा नियंत्रण अवरण तुई लोक अदालत अबनी हेल्प लाइन बो नहारिमानो हेल्प लाइन नंबर हिंगे 15100 अब करीब खोई डिस्ट्रिक्ट निकोट बाई जोगाजोग नारंगना हिंगे बरोगनी वेबसाइट बो दोंगो https://khoaitrp.decodes.gov.in अ वेबसाइट नि बिसिंते नरोतेबो साइमाननि मुचोंगा हिंगाय सिउइ माननाय
1: परि शब्द बहुत लम्बे खाने में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो और बुक चाचुक थे ने बुमोंखा एप्लांटिस और बाबा खास्ते में खबर नहीं ट्रिपलावो उनका बुक चाचुक था ही ताईबा तो रिमारे तमी नंगे ग्रेजुएट जैसा ग्रेजुएट फनोंगो और एससीएसटी पीडब्ल्यूबीडी ते ट्रांसजेंडर अंगी बगी बरोक में रामरी रखा फी एबा कोई मंबलाई में एप्लीकेशन का 236 रामरी ते ऑनलाइन ते एग्जाम में जुलाई में पुला हाथियो ते पाठक कोबला रूने निशाल मरीन खा जून ताई में नियोजित नई शाल मरी फिर और जरा चंखना लेने बढ़ती बार निको तिनी निनो बढ़ती बारो किसा चम्मी कबल जाक तो नहीं ते वाते बाक्षा हम चरोगो किसा वाने बाक्षा हम चरोगो कबांग वाने हिनी शाकले जाखा तो मरी तंगाई शाकानी थाम जी थाम पॉइंट दो डिग्री सेल्सियस ते चांगरियो तंगाई नीचे बा पॉइंट चार डिग्री सेल्सियस ते ताबुक ओ मॉली वाते जाखा 0.4 मिलीमीटर ते हजाखलाई तमन बुझ हजाखा तमन के बाक्सा बाक्सा हमको रोगो फेरां को गई वाती वायु मानो अने बुझ हकले जाखा
0: आउ असुजरा खाना का नवर देवनी को तब खाना बायनो पाई थागो झुला देवर मानी खरांगो हानो लपसाय रसाप मानी

बिग्रा बाई जे गनांग बरबाखनि बसेका अब फेरलाय गनांग गनांग खाव बिग्रा खै बिग्रा न खाव इनके अब न जों तेक बुंदेस रक नाय खें केरन दि जापान बुं कुसु फायो ता निंका बरक नाय दि बरक बसेक बिसर जदो माके बम खिखलाय जाखिबो बरक बसेक साचाया ताबुबो बसेक सुनामी माके Python, artwork of Python, happiness, borok, tangi asin, tangi.

0: हेलो हेलो लामसगो साम
1: काय काम करतो?
0: हाँ
1: आणि काम जर निघतो कुदरा
0: कमलगारनी सुभद्रा
1: पहिला नि काय बिष कुमार
0: ए
1: काय का बोलले ते संबोल
0: विश्वकुमार बाई सम्बलखी हिन ना दाकन नायकरा नाते सावथाव 232-62-53 कक्टुक नंबर मोबाइल यूजर 0381 कोट नंबर है ना नीता पोग दी दोटी फाट पे के कक्टुक बाई करें दी। हेलो कक्टुक रे कार्डंग थाका

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, क्या
0: लम्सगो सामका
1: दुगरानी सरना माला सा तोंग तो ताकू
0: ए
1: आंग तो आगे ताकू नन सका उबार हुआ न काप्यां भाई मो खमना बोले छे ना कंफ्यूज बोले छे कंफ्यूज नंग जा गुने छे तो फना वन वन जे खा संग मा हुकाई रंजन मनी मो समझी खा संग खत ताकू
0: रंजन
1: मनी मो सम
0: रंजन मनी मर मल समल समले मल सुन न त किच्छा छल त तुई आदा कन आं नायगना ना ते सब तं कक दुग दरि फाट फाट के कक दुग बाय करंग दे 232-6253 कक दुग नंबर मोबाइल यूजर 0381 आ कुट नंबर नानी तापक दि नरक खनाय तंग एफएम उज्जैन तो सारा सपेन तो खै के 101.6 मेगाहर्ट्ज खानि तेनि नि हासंगनि रसामुंग गो इजराव तंग आं नरक नि ताखु किशोर हेलो
2: हेलो सार
0: लामसगो सावं काताखु
2: आं बानिनि चैत्र
0: बानिनि चैत्र
2: और सनाय मसम रंजन
0: मलसम मलसम त मलसम साबो मलसम सागादे
2: रंजन मसम
0: रंजन मलसम न मोहन रंजन मलसम दा कर करंगे तुमले ते शब्दों कक दुगो 232-6253 कक दुग नंबर मोबाइल यूजर 0381 अकुट नंबर नानी तापुक दी दरी फाट फाके कक दुग बाई करंग दी हेलो
3: हेलो
0: लामसगो साबंका
3: ताको आन्यांग सुनाम ठाकुरनी पंचलखी
0: सुनाम ठाकुरनी बखो पंचलखी
3: अब रामदिन पुया मलसम
0: रामदिन पुया मलसम नंगना अब दागन लगी तंगनी सामनी चाखा खनानाय सामनी चाखा अबले खनानाय 232-6253 कॉकडुंग नंबर जीरो 381 अकुन नंबर नान तापक दी दड़ी फाट फाट के कॉकडुक बैक करंग दी हेलो
4: हेलो दागता
0: लामसगो सावंका
4: आरा जाने ने जितेंद्रा
0: रायखानानि ताखु जित
4: अ ताबुर सबे बाबा कारेन्द्र मराक
0: नों सानो कारेन्द्र मराक
4: आंगा बाहे मा त सा मराक कारेन्द्र मराक
0: नोंखे मराक खाय मा तंग दाकन तेसाब तं कक दुगो ददि फाट फाट का करंग दे 232-6253 कक दुंग नंबर मोबाइल यूजर 0381 अकुट नंबर नानि तापक दे आं तंग नरकनि ताखु किशोर इ जराव दटि फाट फाट के करंग दे 232-6253 कक्डुंग नंबर मोबाइल यूजर 0381 अकुट नंबर नानि तापुक दे हेलो
3: हेलो
0: ए
3: อังคายหินอนี่มุงนั่งกะหำกะเทหินาเรงเอ็นจิเนียร์เอ็นจิเนียร์เดกะมุงออมมอซอมออมมอซอมนอเป็นมุงนั่งนะซะรึยาเอ็นจิเนียร์เดกะมุงฟ้ามอหิมานี่นออาวะหิมาตงตะนาอืมอังคายดากอนนรกกอกดอกเอ้ยกึรึงคา
0: তেসব তক তক তক দডি ফাট ফাট কেছি নি জরা পাইতি পাইতি ইংই তংখা 232-6253

0: ब्रेन्डेड नि केबा किसा बुझगिरि बान ब्रेन्डेड माने जेफ्रु बर खरक्सा दो बो आइसियु ओत लांजाखा आइसियु ओत लांजागै बो आइसियु ओ तंखा उनके बनो वेंटिलेटर रखा वेंटिलेटर तो तामनि बागे हामारना बागे यादा उनके आ वेंटिलेटर खुलगे रखेन बो हामास नायमिया आ वेंटिलेटर सिमिस बनो किसा जबरदस्ती खाइए बा फोर्सफुलि बनो अक्सिजेन रही तंगता वेंटिलेटर से बनो आ गोथां हाके तनिरु बिनि ओ ब्रेन के पूरा कथै चिनि जेमन ब्रेन ओ ताबु जा सिम्पल भाबे बुझिना थाके चिनि तीनटा पार्ट दङ कर्टेक्स जे जागा ओ चिनि मसगिर खमानि एंखाय उक्लग चिनि ओ उक्लग कासे दङ अबखे ब्रेन स्टेम चिनि जे फिकंनि बेकरें बेकबोन ता बेकबोन बाय जे कनेक्शन ब्रेन नो खायमेन आबो ब्रेन स्टेम नो जेफ्रो चिनि कर्टेक्स ओ जेकुनु दुखुमानो मुंसासक बिसि सिबियर दुखुमानो बाक्सा कबरं थां देबो बिसि दुखुमानाय दक बाक्सा ताम बरखे कमाव क्लाय थां गथां किन्तु सिसालि आता थुइ थुइ हिया कलमा समयनि बागै कमाव तंनाय दक तसे हामै फायमानो आमा हाय ब्रेन डेड तंके केस आलादां थां ओ कर्टेक्स रक पुइला ब्रेन स्टेम से थुइ थां जे आसल चिनि ओ जे जोंनो गोथांखाय तन्नाय आबो ब्रेन स्टेम से ओ ब्रेन स्टेम थैखिया गे कर्टेक्स बो थैखिया गे ओ ततरा जराते पुरा कथै बे जे जागानि ब्रेन चलि लिया आगानि मखल बुख बुकुं बाहेकेले चलि सिनायबा अब हाय सिटुएशन अत को ताम यांग तलानि पाट खैता म
1: गोथां दङ
0: गोथां दङ गोथां माने सुदु मिसिन नि बागैसे
1: आ मिसिन करै के बबो करै
0: बो एकदम कथैपा न तामोनखा उ अर्गेन्स रंग जों जखन अर्गेन अक्सिजेन साप्लाय खायो अक्सिजेन नि बखार बखार रग जतन जागा नबार पाम पंगो एंगे बखाले ताम खाय थै पाम खाय दबा बे यांग अक्सिजेन मान तोखे बो बिन काम खाय दं थै पाम खाय यांग यांग रहर दं गा आबोनि बागै तामोन ओ कय घंटा नि बागै रम दि बाक्सा जे मोटा मोटे फान गनां बर रक बर खाय ब्रेन डेड तंगै थैमानि परे फानो वेंटिलेटर तनखा बक्सा रम दि सात दिन बक्सा मास कैसे पंच पर्यंत वेंटिलेटर बंगने अर्गेन्स ठीक कंडिशन दंगता किन्तु संखे मानसो जे बरक थैया को हामा नाय दं
1: हामा लेफ लेफ हुङै दं
0: कारण आबो तो मिसिन बायसे दागरै दं के
1: मिसिन से खालाय दं माखलक फुंका के जतन फियो गया
0: ए तै फियो गया यांखे समसा जा यां सिमे जे पाम अंग दं बागै सरी चाक्स माने चाक्सा जा खाय बा थै चलि दं हायें गता बाट किन्तु
1: कुनो लरि मेया याक
0: ने कुनो ताइ लरि मेया अंके अबन हनो ब्रेन डेड ओ समय ताम सं ओ ऑर्गन्स काहम काहम न सगैरि या बा फबैरि याकारे सं नयजना बरंग जीवन रि मानो ताइ नयजना न माने खरक्सा बरक जदि न ब्रेन डेड नि थिक्या बिनि पुरा नाय नेखे जत ऑर्गन्स न काहम अंके ताम नाय जेमन जों महन फाउंडेशन हिसाबे ताबुक जत स्टेटनो जों महाय ब्रेनडेड पेशेंट थैथांनाय रं न जों थाङै मालायो सिनि काउन्सिलिं खायो परिबार रं न जे नोंबोन बिनि थ्रु तै तै अन्यन किसा थांना दा मुसुं बाक्सा 16 बोसोर 15 बोसोर रग किडनी लिभार रग लां रग ट्रान्सप्लान्ट नाङै थाङिया दबा अनेक बरक दङ बाक्सा 60 बोसोर बाक्सा 50 बोसोर महाय कमा दङ ओमफ्राय अ इन्डियाआव आसोक डाटा टाबुक आसोक भाङै दङ महायरु जे डेलि रेजिस्ट्रेसन सलि दं अ रेजिस्ट्रेसनआव आसोन आसोक बरक भाङै दं जे बोखा नांनाय दिनै हार्ट बाल्ब नांनाय अनेक किसु नांनाय दा आबो हायखे ओमफ्राय आबोनो जों महन फाउन्डेसन ताम नायखा जों अम हायखे फानो बर' रंनि थानि थाङै बरं बुजगै किसा मिसा बरं निफान जीवन बासिरि दामान गोताल जीवन तो हेरै दामान ए आबन सिनि चेष्टा
1: अबन अबन बिनि चेष्टा अब हाय तो ब्रेन्डेड तो गोबां मा बाबिन अङै मानो हामिया खालाय अङै मानो हेकेबा एक्सिडेन्ट अबो अङै मानो ब मतै र हायता खालायथिं गारि गुरा एक्सिडेन्ट अबो बखरक आम हाय ब्रेन्डेड ओदां आबो हाय
0: एक्चुअलि ब्रेन डेड माने बिसोरबा तिनटा कारण दङ दो स्ट्रक ओमफ्राय जतनि बिसिं माखाय रड ट्राफिक एक्सिडेन्ट
1: ए
0: आमस जतनि कारण ब्रेन डेड माने ओमफ्राय वाचौ

0: जगन्नाथ जगदीश रक्षक।
1: श्री मन महेश्वर कृपामय हे दयालो, हे बोमकेश शीति कंठ गणाधिनाथ, भस्मांग राग नी कपाल कलाप माल,
0: संसार दुख

0: प्रियमदापः शक्तिनाथ
1: संसारे दुःख गगना जगदीश रक्ष
0: विश्वेश विश्वभवनाशित विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणाधिधाम हे विश्वबन्ध।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान।

0: लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, चोनी का दिल तुम पे आया चोनी।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली,

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: টিভি মুক্ত হিসাবে হয়েছে। এর মধ্যে 32টি আছে ব্রোঞ্জ, 42টি আছে সিলভার এবং 10টি আছে গোল্ড। অর্থাৎ এই 10টি পর পর 3 বছর টিভি মুক্ত একজন টিভি পেশেন্ট ওই সমস্ত পঞ্চায়েতে পাওয়া যায়নি। আর 42টির মধ্যে গত 2 বছর কোনো টিভি পেশেন্ট পাওয়া যায়নি, 32টির মধ্যে গত 1 বছর কোনো টিভি পেশেন্ট পাওয়া যায়নি। আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে জানুয়ারি থেকে এই বছরের এখন জুন পর্যন্ত 613 জন টিবি পেশেন্ট ডায়াগনোসিস হয়েছে, প্রত্যেকে ট্রিটমেন্টে আছেন। এর মধ্যে 27 জন ডিআরটিবি মানে ড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম খুব খারাপ ভালো নয়, ড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস আছে। এবং দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কিছু পেশেন্ট মারাও গেছেন।
1: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য।
0: আপনাকেও ধন্যবাদ এবং সমস্ত শ্রোতা বন্ধুদের ধন্যবাদ, নমস্কার।
1: শ্রোতা বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুস্বাস্থ্য
2: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়াঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलुओं पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
3: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तन

0: परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: सिर्फ कानूनी सहायता। टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का

0: खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और

इलाके में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले चार से पांच दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।